Thank you.

any number. A sat sarani. जिसने ए मन मंग ली है उस दिया सारिया मंगा पूरी और कई मंग नानक को ब्रह्म नया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर दिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते मामिल पूर्ण निकुटे नाम का और अंदर सच और सिर्फ दी अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे कर्म वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमावे सच्चे मार्ग चल देना उस तुत करे सच जरा सच पे आप बोलते वो दुध पे आप जरा झूठ पे आप बोलते हैं वो जहर पे आप सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हम वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हम उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सामू जोड़ा अब फल है वह प्राप्त इसे तरीके उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन यह वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम यह गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनिया भी सफर करना हो भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते सानू टिकट चाहिए एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है महाराज पता दसो कितने वीर उसके मोह कितने मरिया सब बॉम्बे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ

0: दुख तह ते नासे। तपत माहे ठाठ वरताई, अनद पया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूजन उपदेसे। पौ चुका निपाव हुए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पय प्रगास साध कह संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनिक
1: अगम अगाध।

माया। किसे कोल माया आज इसे संभाल भी हर कोई सकता है, हर कोई माया संभाल नहीं सकता। बाबा जी उच्चारण करते में जिदे कोल ज्यादा माया आ जाए पर माया दे नाल नाल उदे मन दे विच गरीबी भी हो जाए तो बहुत वधिया गल। पर बहुत मुश्किल ऐसे इंसान मिलते हैं कि जिन्हां दे हिरदे विच माया दे नाल गरीबी नाम अमृत वेले दा जागना होवे। पर कई तो इंसान माया दे विच ऐसा गफलत हो जाते हैं कि रब तो भी बेमुख हो जाते, नास्तिक बन जाते हैं, हजूर उच्चारण करते हैं।

मन हर जी तेरे नाल है। मन हर जी

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उसके विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साड़े जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किमें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी किमें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द के विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला वह तन नू, शरीर नू जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी जड़ी, अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साढ़े वहीकल नू की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल। वो आखते हैं इतने बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना यह जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक की चीज है, एक ही चीज है। तुसी अपनी यात्रा किमें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक ही वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲੈਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है, चली है, उन्हां चीजां दे विच खो गई है, गुम हो गई है, रच गई है, जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना है। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन, लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है, इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है, लेकिन काया नू नहीं पता, काया उसकी एडिक्टेड हो जांदी है, जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है, वह काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नू टालिया है, काया जो मंगती है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस इयाना, तो जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हले बहुत मध्यम है, वह न्याणा है, वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई, क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई, वह इयाना है। जिधर काया लाई फिर है उसके पास वह चलिया फिर है, सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया नू ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस इयाना, एक पंक्ति छोर आखते हैं महाराज जी, कहते हैं

आसा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दियां आसा बंदी जा रही है, पर इस देही नूं ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाई डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाई डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाई डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वह सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत यह रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने यह इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ये शरीर मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नू ही डैमेज कर लिया है, पूंडी चाल। कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जांदी, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जांदी, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हन, ओ कंबदे हन, तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, यह ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनों असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं, तुचा देह कुमला नहीं, नेत्री धुंद, उन अखियां ने जिन्होंने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सतसंग सुणन लई, रब की गल सुन ली, उस पाथ से चलन दे वास्ते वध तो वध इन्फॉर्मेशन सुन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण वह भी समा लंघ गया, कर्ण पै बहरे मनमुख नाम न जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सैसफुल होना सी, वह कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। ता महाराज जी इस इंसान नू कहिंदे हन, अंधले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

सारा कुछ गवा के इथों फिर चल पे, सारा कुछ गवा के इथों फिर कहते चले गए अंधले, तू जगत दे विच आके की पाया, जीवन की विदना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। महाराज जी ने इस शब्द आख्या है, ए तन माया पाया प्यारे, है मेरे प्यारे इस तन नू तू माया दी रंगन दे नाल रंग लिया है, लबेड़ लिया है, पां चाड़ दिती है। जदों असी किसे कपड़े नू डाई करदे हां पहला उसनू पां चाड़दे हां कि रंग पक्का होवे उतरे ना, कहिंदे इसनू तू माया दी पां चाड़ दिती है, माया दे नाल रंग लिया है, अते माया दे नाल रंगया होया तेरा ए तन रूप चोला जो है, कहिंदे हन लीतड़ा लब रंगाए अते स्वादां दे नाल इसनू तू रंग लिया है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरु नू ए तेरा तन ही पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं है, मेरे कंत ना भावे उसनू ए पौंदा नहीं है, उसनू ए पसंद नहीं है, जिस तरह दा तू इसनू बना लिया, जिस तरह दा तू इसनू गिजा लिया, जिस तरह दियां आदतां तू इस अपने तन नू पा लईयां हन, कहिंदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु नू इस उत्ते कोई प्रसन्नता नहीं है, मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए के उसकी तेरी इंटीमेसी किवें हो सकती है, उसका तेरे नाल मिलन किवें हो सकता है, तेरे तन तो उसनू जो है वह बदबू आती है, तेरा तन जो माया दे नाल दागी हो चुका है, स्पॉटड हो चुका है, ए माया दी पहां दे नाल अते गलत किस्म दे अत्यंत किस्म दे स्वादां दे नाल ए इस दे अंदर चिक्कड़ बनया होया है, ए तन ही हाले अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्रेम दे काबल नहीं है, मेरे कंत ना भाव चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए, वो तेरी सेज दे उते किवें आवे, तेरे नाल वसल किवें होवे, तेनू वो मिले किवें, कहिंदे हन तू अपने तन नू ही नहीं समझिया। साडी परमार्थिक यात्रा दा हाल, साडी स्पिरिचुअल लाइफ दा ए हाल है कि असी अपने इंस्ट्रूमेंट नू ही नहीं समझे हां। गुरु नानक साहब सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विचों हुण असी इस नू आरंभ करना है, जो कि अगले एक दो दिन इसकी विचार चलती रहेगी, कि सानू गुरबाणी दे विचों सब तो पहला अपने तन दे प्रति समझना चाहिए है कि साडा तन की चीज है, तन की चीज है जिसनों असी दिन रात वरतने हैं, असी वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, पर सानू आज जरूरत है कि असी गुरु बाबा जी सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विचों जो गुरु साहबां ने इस तन दे प्रति सानू ज्ञान बख्शिया है वो सुनिए अते समझिए कि तन की वस्तु है, उस दे उते 13 नुक्ते महाराज जी दी बाणी दे विचों मिलते हैं, 13 नुक्ते, तो 13 दे 13 असां सुनने हैं कि उन्होंने तन दे मुतलक अपने विचार दिते हैं। आओ मैं आरंभ करन लगा हां। पहला नुक्ता है तन दे प्रति गुरु महाराज आखते हैं कि तुहानू पता है कि यह तन की है, कहिंदे हन नंबर एक यह दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु वह हुंदी है जिहड़ी दात नाल बख्शिश दे नाल ते मिल जाए, वैसे तुसी उसनू प्राप्त नहीं कर सकते, वह दुर्लभ है। सो साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु वह हुंदी है जिसकी कोई कीमत ना पा सके, कोई कीमत ना चुकाई जा सके। साडे पास जितनिया भी चीजा हन उना दी हरेक दी कोई ना कोई कीमत है, किसे दी घट किसे दी ज्यादा, हरेक देते कोई ना कोई प्राइस टैग लग्या होया है। साडे पास ओ केड़ी चीज है जिस दे उते कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता, ओ तन है जिस दे उते कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो जे साडे पास एक अजिही चीज है जो जिसकी वैल्यू इतनी है कि उसनू इनवैल्यूएबल कहना पड़ेगा, तो फिर असी कितने क अमीर होए, कितने क असी अमीर होए कि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जो कि बाय द ग्रेस ऑफ अकाल पुरख सानू प्राप्त हुई। महाराज जी पहला नुक्ता समझाते हैं, ये दुर्लभ है, इसनू नोट कर लेना। कहते हैं लख चौरासी भरमतिया दुर्लभ जन्म पायो,
84 जून च भ्रमण तो बाद कहिंदे इह तैनूं दुर्लभ जन्म दुर्लभ वस्तु ह्यूमन फॉर्म मिली है। 84 भ्रमतिया

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कद असी सोचे कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखां नूं मैं नमस्कार करदा हाँ, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सी, कहिंदे हन

स्पष्ट है लुप्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर से इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर से ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होता है, गुरुदेव होंगे हैं, इस मंदिर के भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर की असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं हैं। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनूं महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हाँ कि सानू एक ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर दे अंदर वो ही कुछ ले जा जो जान दे योग है, इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर के अंदर का वातावरण जो है वह पवित्रताई वाला रख, पर साडे अंदर की है वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महान लोभ द्रोह याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो यह कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन के मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर इस

अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीज एक जीव बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जीव पावक का सहज सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा माने अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मेया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उतार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम अतार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पीद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए ताखुर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगरे आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

किस गुर को सद करी नमस्कार, किस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के

सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु